बनाना विकट जहरिला राष्ट्रकर्मी बनाए भोकाए लेख्नलाई बचपन शिशुका।

विद्वत् द्रष्टारस्रष्टा अभिनव भवमा मान सम्मान पामुन् विद्वत् द्रष्टारस्रष्टा अभिनव भवमा मान सम्मान पामुन् सुखादर्श उर्जा गुरुजन विदुषी।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।